0: खाना दूध कुंड आयल फॉर्म स्टोर हम प्रतिबद्धता पेट्रोलियम पदार्थ में शुद्धता यहाँ डीजल पेट्रोल तपाईले भनेकै समयमा तुरंत उपलब्ध छ संपर्क व्यक्ति परशुराम तामाङ 9847-87-35-19 समुद्र साक्य 9861-83-35-34 टेलीफोन 0385-20-43 नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर प्रोपाइटर तोरण कुमार श्रेष्ठ 9862-82-13-87 नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सँगै न्यू आइस मोटर पार्ट्स एण्ड सप्लायर्स मा सम्पूर्ण गाडी मर्मत सम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ यहाँ साना तथा ठूला जुनसुकै गाडी मर्मत गरिन्छ सम्पर्क नमुना श्रेष्ठ 9862-93-06-46 नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सुनु दुधकुण्ड नगरपालिका साथ गर्मा जोर बौद्ध सुनिखुम्बु
1: जंगल

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुन्द नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु।

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुतकुम नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु।

0: 한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더
1: बौद्ध टुसाल में अवस्थित केप्स कलेज में कक्षा एगार का लागि साइंस मैनेजमेंट ल तथा ह्यूमैनिटीज संकाय में नया भर्ना खुलियो। उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार प्रविधि मैत्री सिकाई में जोड़ दिदै यहां अनुभवी दक्ष एवं समर्पित शिक्षक शिक्षिकाहरूद्वारा अध्यापन गराइन्छ। सर्वोत्कृष्ट शैक्षिक नतीजा नियमित अतिरिक्त क्रियाकलाप र जिम्मेदार विद्यार्थी का लागि विशेष छात्रवृत्ति को व्यवस्था।
2: केप्स कलेज सँगै आफ्नो उज्जवल भविष्यको जग बसाल्नुहोस्।
3: केप्स कलेज बौद्ध टुसाल।
1: थप जानकारीका लागि सम्पर्क 9712571507 9712571507।
2: सफलताको सही छनौ केप्स कलेज।
4: सड़क निर्माण कार्य संबंधी अत्यंत जरूरी सूचना। सालू हिंदी सड़क निर्माण कार्य फूर्ति हुई महसी तर्फ तीव्र गति में अगाड़ी बढ़ी रहे निर्माण क्षेत्र तल्लो भीत नसित खामसी आसपास का स्थानीय बासिंदा घरस्थौरा तथा पशु चौपाए सुरक्षित क्षेत्र तक मात्र नजान तथा अवसर भाग विशेष सावधानी अपना इसी सूचना मार्फत अनुरोध कर निर्माण कार्य सहज सुरक्षित समय संपूर्ण होना सदै को सहयोग को अपेक्षा
5: सड़क उपभोक्ता समिति सालुन सुलुखुम्बु।
6: हत्तेरिका दिदी, यो नयाँ घर बनाउनु कस्तो तनावको काम रहेछ भने बिजुलीको सामान किन्न बजारका चार चारवटा पसल चाहे कतै पाउनु। ओह, अब सामान लिन काठमाडौँ नै जानुपर्ने हो कि क्या हो? धत बहिनी, तिमी पनि कस्तो जमानामा छौ? बिजुलीको सामान लिन काठमाडौँ किन जानु? हाम्रै सुरुखुम्बुमा सबै थोक पाइन्छ त।
7: ए हो र दिदी, कहाँ पाइन्छ? म त खोज्दा खोज्दा थाकिसके हो।
6: ल सुन बहिनी, सुरु दुखुम्ब नगरपालिका वडा नम्बर पाँचमा रहेको शान्ति स्टोर एण्ड सप्लाई छ नि, त्यहाँ बिजुलीका सम्पूर्ण नयाँ सामानहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छन्। बोर्ड आधुनिक स्विच वाइरिङका सामान जे खोज्यो त्यही तयार। लौ, नयाँ सामान पनि पाउने, पुरानो सामान पनि मर्मत हुने। म त ढुङ्गा खोज्दा बेल्टा मिले जस्तै भयो नि दिदी।
8: हजुर, बिजुलीको भरपर्दो सहयात्री शान्ति स्टोर एण्ड सप्लायर्स, सोलु गुटकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर पाँच सल्लेरी सोलुखुम्बु। यहाँ बिजुलीका सम्पूर्ण सामानहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाउनुका साथै नयाँ तथा पुराना सामान मर्मत पनि गरिन्छ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बरहरू कुल नारायण श्रेष्ठ 9763007784 र विवेक श्रेष्ठ 9862080000। सुनु दुखकुण्ड नगरपालिका पाँच सैलिरी सुनु।

मछेरी को दारू चुको दही लाइटी मैं छाओ मछेरी को दारू चुको दही लाइटी मैं छाओ गीतांगे को छोरू मुता

मेरा खेत भरी पैसा फल रुख टिप्ने अरु खेतला बसौली सुख ढुंगे प्यारो लन ने पूजा करे पछि हट्नु कसरी झन तिमी।

0: सोलु एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: 3 PM
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू
2: कंप्लीट फाइटिंग सॉल्यूशंस

जनहित में जारी संदेश स्वास्थ्य जीवन को आधार हो संतुलित पोषणयुक्त आहार विशेष करी गर्भवती महिला सुत्केरी आमा र पांच वर्ष मुनि का बाल बालिका पोषणयुक्त खाना को विशेष आवश्यकता पर्द दैनिक खाना में दाल भात हरियो तरकारी फल फूल दूध तथा अन्य पोषणयुक्त खानेकुरा समावेश करौं जन्मे एक घंटा भि शिशुलाई स्तनपान गराऊ छ महीनासम शिशुलाई आमा को दूध मात्र खुवाऊ छ महीना पछि स्तनपान संगे उमेर अनुसार को पूरक खानेकुरा शुरू गराऊ आयरन भिटामिन ए र जिंक युक्त खानेकुरा नियमित सेवन गराऊ जंक फूड धेरै नुन र अस्वस्थकर खाना टाड़ा रहूं कुपोषण ने बाल बालिका को शारीरिक तथा मानसिक विकास में नकारात्मक असर पार्ने गर्छ त्यसैले हामी सबै मिलेर पोषणयुक्त समाज को निर्माण गरौं जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बु

0: का सभी को सरोकार आज का बाल बालिका भोलि का सदन भार
1: बाल बालिका मधि हमें कने दुर्व्यवहार कानून ने दंडनीय मिलेक तसर्थ कसले बाल बालिका हमें दुर्व्यवहार नगरऊ उन्हीं को अधिकार सुनिश्चित कर आपने तर्फवा सहयोग करो अनिवार्य रूप में विद्यालय बचाओ यह बाल मनोभावना बुझे शिक्षण सिकल क्रियाकलाप सहभागी कराओ
0: कहीं कति बाल बालिका मधि दुर्व्यवहार भैया स्वयं नबसल संबंधित निकाय में उजुरी करूं बाल बालिका को सुरक्षा तथा संरक्षण सबको जिम्मेवारी असल सभ्य नागरिक को परिचय हूं बाल बालिका को सुरक्षा तथा संरक्षण सबको जिम्मेवारी असल सभ्य नागरिक को परिचय हूं
1: ऑस्ट्रेलियन एजमा ऑस्ट्रेलियन हिमालयन फाउंडेशन के सहयोग में।